0: அந்த வார்த்தைகளை ரொம்ப கவனமாக இருக்கீங்க. ரொம்ப வாழ்த்துக்கள், ரொம்ப நன்றிங்க. நன்றி,
1: நன்றி, வணக்கம்.
2: நன்றி, சூப்பர்.
0: பரவாயில்லையே, நானும் வந்து டக்குன்னு யாரையாச்சும் இப்படியாச்சும் மாட்டிக்கலாம், மாட்டி போட்டு மாட்டி விட்றலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். முடியல, உங்களால் ரொம்ப டஃப்பாக தான் இருக்குது கேமு அப்படின்னு நமக்கே நம்மளே சொல்லிக்கணும். அடுத்ததாக வரப்போகிற நேயர் எப்படி விளையாட போகிறாங்கன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விளம்பர இடைவெளி கேட்டுடலாமா?
3: भाई काफी बिजी लग रहे हो।
4: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
3: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
4: सच?
3: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
4: समझ गया।
5: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।